बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। तो दोस्तों, आज है तारीख यानी कि 6 जून और दिन है सैटरडे यानी कि शनिवार, यानी हफ्ते

का वो दिन जिसका इंतजार हम मंडे की सुबह से करते हैं। जून का महीना है, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है, मॉनसून भी दस्तक देने ही वाला है, लेकिन आज शहर के घरों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। क्या? तो दोस्तों बता दूं कि एक तरफ, जी हाँ, एक तरफ चादर तान के हमारे चैंपियंस है जो अलार्म को बोल रहे हैं, बेटा तुम बचते रहो, हम तो करवट लेकर फिर सोएंगे। और दूसरी तरफ हमारे हैं सुपर एक्टिव लोग, यानी कि जो सुबह 6 बजे उठकर पार्क के चक्कर काट चुके हैं, यानी कि नहा धोकर चाय पी रहे हैं और घर की सफाई भी शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की हमारी गपशप इसी दिलकश यानी और दिलचस्प मुकाबले पर है, यानी कि आप अभी इस वक्त किस गैंग में हैं, यानी कि लेजी या फिर एक्टिव, या फिर बिस्तर में दुबके हैं, या फिर काम में लग गए हैं। बिल्कुल, आप इस विषय पर मुझसे अपनी बातें साझा कर सकते हैं कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सीधे मेरे नंबर पर यानी कि हमारे रेडियो स्टेशन के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वैसे आप सभी तो नंबर जानते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं 2213-1341 यानी कि 2213-1341 पर आप सीधे कॉल करके बता सकते हैं कि इस वक्त अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेजी या फिर एक्टिव। लेकिन पहले लोगों की नींद भगाने के लिए मैंने तो अभी आपको एक तड़कता भड़कता एनर्जेटिक सॉन्ग सुनाया, लेकिन अभी भी जो आंखें मल रहे हैं तो चलिए सुनते हैं एक अगला गीत, यानी कि कड़क और एनर्जेटिक गाना। तो दोस्तों सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपनी दोस्त ज्योति के साथ कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में।

0: तो दोस्तों हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग ज्योति जी।
0: गुड मॉर्निंग।
1: मैं मोनिरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सांकरे लाहौर से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा ट्रॉपिक लाने के लिए और इतना बेहतरीन गाना बजाने के लिए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बताइए आप किस गैंग में शामिल है, यानी कि एक्टिव है या फिर आज लेजी है आप?
1: ऑफकोर्स एक्टिव
0: जी,
1: क्योंकि देखिए हमारे जो सीजन है मेनली थ्री सीजन महसूस करता हूँ, वो है रेनी सीजन, विंटर सीजन या समर सीजन। तो सीजन तो भगवान चेंज करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे हाथ में जो है हम खुद को खुद चेंज करना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे वो सीजन के साथ मनाना चाहता है, लेकिन नहीं मनाऊंगा तो मैं बैकवर्ड आऊंगा, कारण हमारे इक्वल करना चाहते हैं, समाज को सज्जो करना चाहते हैं, बंगला जेवर सज्जो करना चाहते हैं और सीजन रेनी को मनाना चाहता है, क्योंकि चास बास होता है जब फसल फलाता है, इसीलिए हमारे रेनी को मनना चाहते हैं। और विंटर को तो सबको पसंद है, लेकिन सामर जो है उसका जो प्लस पॉइंट है जो अच्छा अच्छा फ्रूट पता है, जैसा कि आम, हिमसागर आम, नेंगरा आम, लीचू, कांठाल, बहुत सारे फ्रूट हमारे सीजन में आता है। और हम सामर का सीजन तब महसूस करता हूँ अच्छा जब विंटर के साथ तुलना करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। विंटर के साथ सामर इतना कड़ा है, इतना खराब है, मैं महसूस करता हूँ, लेकिन विंटर नहीं आए तो इसीलिए मैं सामर को सहना पड़ता है। थैंक यू मैम।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों एक आवश्यक सूचना, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर जिलों के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप जहां रहे जैसे भी रहे सुरक्षित रहे।

तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 10:19 और 8 सेकंड। आप सुन रहे कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। यानी कि दोस्तों गीतों और बातों का ये जो सिलसिला है ठीक चलने वाला है सुबह के 11 बजे तक। तो चलिए दोस्तों अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर।
1: तो दोस्तों हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके थे, ये सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
2: मैं अरूप बोल रहा हूँ हावड़ा से
1: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरूप जी हमारे इस कार्यक्रम में। तो बताइए अरूप जी, क्या सैटरडे का दिन है यानी कि वीकेंड का दिन है, आज शनिवार का दिन है, तो आज आप एक्टिव मूड में हैं या फिर ले

0: करता है, हम छोटा मोटा काम करते हैं।
1: ओ अच्छा, तो यानी कि कल भी आपका ऐसे ही रहने वाला है दिन?
0: हाँ, ऐसे भी रहना है
1: जी। तो यानी कि आप सुबह 6 बजे से उठकर काम पर लगे हुए हैं?
0: हाँ, 6, 6:30, 7।
1: यानी कि कुछ लोगों के लिए दोस्तों वीकेंड का दिन जो होता है एक्टिव मोड में ही होता है।
0: तो जब काम ढीले पड़ जाएगा ना, तब हम इधर उधर घूमता है।
1: ओह अच्छा,
0: मैं तो 64 बरस हो गया।
1: हम्म,
0: मेहरबानी करके एक पुराना गाना दीजिए।
1: कोशिश अच्छा करूंगी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अरूप जी हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों एक आवश्यक सूचना, वीरभूम मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में आज सुबह 10:15 से लेकर अगले 2-3 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश से और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण 24 परगना में तेज हवाएं चलने की बहुत संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप जहां रहे सुरक्षित रहें।

तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में, और मैं हूँ आज आप सभी के साथ आपके अपनी होस्ट चंदो ज्योति लेकर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं सैटरडे मॉर्निंग के दो अलग अलग रंगों की। पहले बात करते हैं हमारे प्यारे लेजी गैंग की, यानी कि भाई साहब इसके लिए शनिवार की सुबह जो होती है ना किसी लॉटरी से कम नहीं होती। और इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट पता है क्या होता है? अलार्म बजने पर उसे स्नूज नहीं करना होता है, बल्कि सीधे टर्न ऑफ करके दूसरी करवट ले लेना। लेकिन मानना होता है इन लोगों का कि अगर सैटरडे की सुबह भी जल्दी उठ गए तो पूरे हफ्ते की मेहनत का अपमान है। यानी कि दोस्त, मेरे एक दोस्त है, उनका कहना है कि शनिवार को दोपहर 12 बजे से पहले उठना उसके लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग जो है बिस्तर पर लेटे लेटे कहीं ये शो तो नहीं सुन रहे? बिल्कुल, यानी कि अपने इस आज लेजीनेस पर गर्व कीजिए और साथ ही साथ बताइए कि बिस्तर में बिताने का प्लान है या फिर सच में इसे सुहाने और आलसी मूड को थोड़ा और हसीन बनाने का। बिल्कुल, लेकिन बनाऊंगी मैं इसे अपने अगले खूबसूरत गीत से। तो दोस्तों जब तक आप फोन में डायल करें, जी हाँ हमारा नंबर डायल करें, तब तक क्यों ना अगले गीत की ओर रुख किया जाए।

आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

की ओर बढ़ चला है। वैसे दोस्तों बता दूं कि चाहे आप सुबह उठकर पूरा शहर छान मारे या फिर दोपहर तक चादर तान कर सोए रहे, शनिवार का असली मजा इसी बात में है कि आप जो भी करें अपनी मर्जी से करें। पूरे हफ्ते बॉस की सुनने के बाद ये वीकेंड ही तो होता है जब आप खुद अपने बॉस होते हैं। अगर सोना है तो सुकून से सोइए, और अगर काम करना है तो खुशी से कीजिए, यानी कि इस प्यारी सी सुबह को और हसीन बनाइए। अपनों के साथ गर्मा गर्म चाय पीजिए और अपने दिन को मज़ेदार बनाइए। तो दोस्तों अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त, लेकिन नॉन स्टॉप गीत चलते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मन पसंदीदा चैनल पर, यानी 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ इसी तरह खुश रहिए। तो दोस्तों जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ, यही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर, और अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाज़त।

107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

0: 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल योर्स पर आप सभी का स्वागत है। परियोजना प्रस्तुति लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और आज हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में। दोस्तों, ये भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसने करोड़ों परिवारों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना कदम उठाया है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमारे देश में कई ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में वर्षों तक खाना लकड़ी, कोयला और उपलों के चूल्हों पर बनाया जाता था, पर इन्हीं चूल्हों से निकलने वाले धुएं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते थे। आंखों में जलन, सांसों की तकलीफ और फिर कई गंभीर बीमारियों से भी उन्हें जूझना पड़ता था। और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराना था। इस योजना के अंतर्गत पात्र जो है वो परिवार की महिला को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करते हैं और इसे न केवल रसोई के धुएं से उन्हें मुक्ति मिलती है बल्कि महिलाओं के समय में भी काफी बचत होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यार्स।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

दोस्तों अभी अभी आपने सुना इस गीत को अरिजीत सिंह के साथ अरमान खान की आवाज़ में, और ये फिल्म धुरंधर का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रोमांटिक सा तराना था। और इस तराने को सुनते सुनते आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम तीन का तड़का में, जिसमें मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त होस्ट देविका, और फिलहाल आपके साथ रहूँगी पूरे चार बजे तक। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 3:13 और 10 सेकेंड।

वेल फ्रेंड्स, अभी अभी आप सुन रहे थे जुबीन नौटियाल की आवाज में इस गीत को, और ये गीत था फिल्म जो है उसकी बात अगर की जाए सैयारा फिल्म से, और सैयारा फिल्म अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई। आप जानते हैं पिछले साल ही ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था, क्योंकि इस रोमांटिक लव स्टोरी को देख कर और इस फिल्म की भावनाओं के बारे में सर्च कर लोगों ने इसे बना दिया ब्लॉकबस्टर हिट। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ऑन स्क्रीन जो जोड़ी नजर आई थी उसने भी अपने फिल्म इसी फिल्म से डेब्यू किया था, और इस डेब्यू फिल्म के साथ ही वो बन गए थे ब्लॉकबस्टर जोड़ी के रूप में। फिलहाल ऐसे ही कुछ और रोमांटिक तराने आप सभी के लिए इंतजार कर रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का में। फिलहाल आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम का अगला तराना आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत।

तुम क्या मिले, ये गीत अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। और आपको बता दूं कि ये गीत था श्रेया घोषाल के साथ अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और फिलहाल आप जो गीत सुन रहे हैं एक के बाद एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही रोमांटिक ये जो तराने हैं, इन गीतों को एक के बाद एक आप सुनते जाएंगे 107 FM रेनबो पर, क्योंकि कार्यक्रम

शुरू हो चुका है आप सभी का प्रिय कार्यक्रम जिसका नाम है जी हाँ तीन का तड़का, जिसे लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और फिलहाल आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम का अगला तराना सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाज़ में।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे जिंदगी 50-50 से ये गीत रेखा भारद्वाज की आवाज में। और दोस्तों जिंदगी 50-50 बेहतरीन एक फिल्म, लेकिन इस फिल्म का ये गीत बहुत ही खूबसूरत है और इस गीत में रेखा भारद्वाज की आवाज भी बेहतरीन लग रही है। तो फिलहाल आप सभी के लिए ऐसे बेहतरीन तरानों की नजरानी है आज के इस कार्यक्रम 3 का तड़का में।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: वेल फ्रेंड्स, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म उंगली से, और इसे सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है कि आपसे कुछ ही देर में अभी लेना है हमें विदा। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि अभी अभी आप जो गीत सुन रहे थे वो था विशाल ददलानी के साथ अनुष्का मनचंदा की आवाज में। फिल्म का नाम आपको बता ही चुकी हूँ, उंगली फिल्म से था ये गीत, जिस गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और सचिन जिगर ने इसे किया था कंपोज। और एक के बाद एक बेहतरीन तरानों को सुनते सुनते समय हो चला है कि अब लूं आपसे विदा, और चलते चलते आप सभी के लिए फिल्म का नाम ए दिल है मुश्किल। इस फिल्म से आप सुनेंगे अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाज में आज के कार्यक्रम का अगला तराना। और ये तराना सुनते हुए फिलहाल कार्यक्रम 3 का तड़का में आज बस इतना ही, और आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी ठीक 7:02 पर इसी चैनल पर। लेकिन उसके पहले अगर आप बेहतरीन पुराने गीतों को सुनना चाहते हैं तो जरूर सुने 100.1 FM गोल्ड खरासाना पर कार्यक्रम जिसका नाम है चाय और क्लासिक्स में। लेकिन फिलहाल इसी चैनल पर अगर आपको सुनना है तो 107 FM पर आप सुन सकते हैं ठीक 7:02 पर। फिलहाल चलते चलते आप सभी के लिए ये गीत,
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर। 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर।

0: www.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर
2: तुम्ही सुनचो वीकेंड कैफे 107 FM रेनबो ते वीकेंड कैफे वीकेंड कैफे।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: जाने अनजाने

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:58। आप सुन रही हैं 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, लेकर कार्यक्रम जिसका नाम है, जी हाँ, छाया लोक। और छाया लोक में आज यानी शनिवार की शाम का सेगमेंट जाने अनजाने लेकर हाजिर हूँ और आपके साथ बनी रहूंगी पूरे 9 बजे तक। तो फिलहाल आप सभी का स्वागत हो चुका है ऐश किंग के साथ साशा तिरुपति की आवाज में ये तराना सुनते हुए, जो कि था फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। और आपको बता दूं कि आज कुछ ऐसे ही तराने हैं हमारे पास, बहुत सारे ही तराने हैं, तो फिलहाल एक के बाद एक जरूर सुनाऊंगी और उनसे जुड़ी कुछ बात

भी जरूर होंगी। तो फिलहाल जाने अनजाने के अंतर्गत आप सुनेंगे आज के कार्यक्रम का अगला तराना, एश किंग और क्लिंटन केर्जो की आवाज में, फिल्म का नाम बॉडीगार्ड।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:14 और अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉडीगार्ड से ये गीत। जी हाँ, बॉडीगार्ड वही फिल्म है जिसमें सलमान खान के साथ नजर आई थी करीना कपूर। और आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी ये आई थी

साल 2011 में। साल 2011 की इस फिल्म में करीना और सलमान के अलावा हेजल किच, कटरीना कैफ भी नज़र आए थे और भी कई सारे जो एक्टर्स हैं वो इस फिल्म में नज़र आए थे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी ना, इसने बहुत ही अच्छा बिजनेस भी किया और साथ ही साथ इस फिल्म के गीतों को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और आपको बता दूँ कि ये जो फिल्म थी, इसके इस गीत को जो अभी भी आप सुन रहे थे, इसमें आवाज़ दी थी क्लिंटन केजो के साथ साथ एश किंग ने भी। और बॉडीगार्ड फिल्म जो है ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी और इसमें कुछ कुछ सस्पेंस भी कुछ जगह पर था, जो कि ऑन स्क्रीन सलमान खान दिखते हैं सस्पेंस के साथ, लेकिन हम सभी को पता होता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें क्योंकि फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त थी।

वेल फ्रेंड्स, फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अगला तराना। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक, म्यूजिकल यॉर्स पर कार्यक्रम जिसका नाम है, जी हाँ, आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम छायालोक, आज शनिवार के सेगमेंट जाने अनजाने के साथ।

दोस्तों अभी भी आप सुन रहे थे इस गीत को गजनी फिल्म से। 2008 में ये फिल्म आई थी और ये फिल्म जो थी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नामक एक जो रोग है वो हो जाता है आमिर खान को, और कैसे होता है, क्यों होता है, इन सभी चीज़ों को लेकर ये जो फिल्म थी इसे बनाया था। और साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म को निर्देशित किया था A.R. मुरुगोडसा ने, और इन्होंने आमिर खान के साथ यहाँ कास्ट किया था आसिम जिया खान और प्रदीप रावत को भी। और आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी इसने तकरीबन 45 करोड़ की बजट में ये फिल्म बनी थी, और इस फिल्म का पूरा अगर कारोबार जो है उसकी अगर बात की जाए तो 280 करोड़ इसने कमाए थे, और ये 100 करोड़ के क्लब की पहली फिल्म मानी जाती है। आपको बता दें कि ये फिल्म बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी सी एक फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा, ज़रूर देखने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि फिल्म जो है बहुत ही खूबसूरत है। और आमिर खान तो ऑल टाइम फेवरेट है हम सभी के, क्योंकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो है वो। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये गीत तो आप सुन चुके हैं जो कि था फिल्म गजनी से, लेकिन अगला जो गीत है, अगला जो तराना है वो कौन सी फिल्म से है? तो आपको बता दें कि साल 2015 में ये फिल्म आई थी जिस फिल्म से ये गीत है। साथ ही ये फिल्म जो है हिंदी भाषा में नहीं, बल्कि मूलतः हिंदी भाषा में रिलीज नहीं हुई थी। और आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन किया था डायरेक्टर शंकर ने। आपको बता देते हैं कि ये है फिल्म आई, जिस फिल्म में विक्रम, एमी जैक्सन और सुरेश गोपी के साथ और भी अन्य जो कलाकार हैं वो नजर आए थे। 100 करोड़ की बजट में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म ने 240 करोड़ का बिजनेस किया था। और एक रोमांटिक फिल्म के साथ साथ इस फिल्म में बहुत सारे जो एक तरह से षड्यंत्र हैं उन्हें दिखाया गया। और आई फिल्म में एमी जैक्सन तो बहुत सुंदर लगी ही हैं, साथ ही विक्रम ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है, बहुत ही डिफरेंट एक किरदार निभाया है जिसे इन्फेक्टेड कर दिया जाता है उसे एक वायरस से, जिसकी वजह से वो जो एक मॉडल के रूप में दिखता था वो अचानक से दिखने लगता है एक बहुत ही एक तरह से कुरूप हम कह सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो एक साथ हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये फिल्म क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्यों देखनी अच्छी है, तो ये आप अगर फिल्म देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही एक प्यारा मैसेज भी दिया गया इस फिल्म में। लास्ट में, एंड में एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया गया, और वो मैसेज ये है कि भले ही हमारे ऐसे पार्टनर जिन्हें हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनका चाहे उन्हें किसी भी रूप से, किसी भी तरह से, किसी भी प्रॉब्लम से क्यों ना गुजरना पड़े, लेकिन उनका साथ जो है अगर हम दें तो हम उन्हें फिर से उनके वास्तविक मुकाम तक, या यूँ कह सकते हैं कि उनके असली मुकाम तक फिर से पहुंचा सकते हैं।

तो साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार हम कंपैरिजन के चक्कर में, कई बार हम रिश्तों में बहुत ज्यादा कुछ चाहने के चक्कर में अपने रिश्तों को ही खो बैठते हैं। तो ऐसा खोना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा ही कुछ मैसेज है इस फिल्म के इस गीत में।

दोस्तों, फिल्म रॉकस्टार से आप सुन रहे थे ये गीत। और आपको बता दें, रॉकस्टार जो फिल्म है ये आई थी साल 2011 में। इम्तियाज अली की बनाई ये फिल्म है। और आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी, निर्देशन भी उन्होंने ही दिया। और साथ ही इस फिल्म में नरगिस फाकरी के साथ साथ नज़र आए थे रणबीर कपूर। और आपको बता दें कि ये एक ऐसे रॉक स्टार की कहानी है जो इश्क में होता है, और इश्क में उसकी जो सोच है, उसके जो विचार हैं, वो कहीं ना कहीं एकदम

मतलब प्योर होते हैं, चाहे वो उसे सही गलत का फर्क जो है वो भूल जाता है और उस प्योर लव के साथ एकदम अपनी जो प्रेमिका है उनके पास पहुंचता है। लेकिन वही यही खास बात है इम्तियाज़ अली की फिल्म्स की कि वहाँ कहीं ना कहीं कुछ हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म्स भी हैं जैसे जब वी मेट वगैरह, लेकिन जब हम बात करते हैं रॉकस्टार जैसी फिल्म्स की, वहाँ पे भले ही हमें एंड में सब जो है ठीक हो जाना वो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये फिल्म्स अपने आप में होती हैं कम्प्लीट। तो ऐसे ही बहुत सारी फिल्म्स जो हैं इम्तियाज़ अली ने बनाई हैं और उनमें से जब वी मेट तो मैंने नाम ले ही लिया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फिल्म्स हैं जैसे कि ये जवानी है दीवानी, बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म है। तो ऐसी फिल्म्स वो बनाते हैं, साथ ही तमाशा फिल्म जो है वो भी उन्हीं की फिल्म है। तो ऐसे फिल्म्स को देख कर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस जो हैं उन्हें हमारे अंदर वो छिपे होते हैं और इन फिल्म्स को देखकर वो इमोशंस कहीं ना कहीं बाहर आ जाते हैं और अपने आप को हम जोड़ पाते हैं इन फिल्म्स से।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: जाने अनजाने

दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज ब्रेक के बाद आप सभी ने सुना इस गीत को मोहित चौहान की आवाज में। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, और कार्यक्रम जो है वो जारी है। छायालोक के अंतर्गत आप सुन रहे हैं जाने अनजाने। जी हाँ, छायालोक के अंतर्गत ये सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं एवरी सैटरडे, यानी हर शनिवार की शाम। फिलहाल आप सभी के लिए एक के बाद एक बेहतरीन तराने हैं हमारे पास कार्यक्रम छायालोक के जाने अनजाने में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक जाने अनजाने।
1: दोस्तों, छाया लोग जाने अनजाने सुन रहे हैं आप, और स्टूडियो की घड़ी में 8:29 और 25 सेकंड है समय। आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को अपनी दोस्त और होस्ट देविका के साथ।

ऑन स्क्रीन ऐश्वर्या राय के साथ अनिल कपूर नजर आए इस गीत में। और आपको बता दें, फिल्म ताल की इस गीत को बहुत ही पसंद किया गया। इस फिल्म पर फिल्म में जितने भी गीत थे वो उन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, क्योंकि 1999 की ये जो फिल्म आई थी सुभाष घई के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म। और इस फिल्म के जो गीत थे उसमें म्यूजिक दिया था ए आर रहमान ने। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में अनिल कपूर ऐश्वर्या राय के साथ अक्षय खन्ना भी मुख्य किरदार में थे। और इस फिल्म ने 15 करोड़ में अपना पैकअप किया था और साथ ही साथ 51 करोड़ से भी ज्यादा का इसने किया था बिजनेस। तो दोस्तों आपको बता दें, आप सुन रहे 107 FM रेनबो पर दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स में कार्यक्रम छायालोक, जिसमें आज का सेगमेंट यानी कि जाने अनजाने लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और ये कार्यक्रम जो है ये अब तकरीबन अपने अंतिम मुकाम पर आ गया है और समय हो चला है कि आपको कुछ और तराने सुनाएं और कुछ ब्रेक भी है हमारे साथ। तो बीच बीच में कुछ ब्रेक और साथ ही साथ आप सभी के लिए पेश है ये गीत।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला 8:55 और दोस्तों फिलहाल जो समय है वो पता नहीं बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन इस बारिश के बारे में न सोचते हुए फिलहाल आपसे लेती हूँ विदा, क्योंकि आज कार्यक्रम छायालोक में जो अंतिम गीत है उसे आपके लिए प्ले करना है अब तो आपको बता देते हैं कि ये गीत है कौन सा। अरिजीत सिंह के साथ शाश्वत सिंह की आवाज में आप सुनेंगे इस गीत को, फिल्म का नाम तमाशा। आइए सुनते हैं इस गीत को और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।